संपत साहा लिखिया मिल कर पाव हो तेल, देहो सजन असीसड़िया ज्यों होवै साहेब स्यों मेल, कर करे हो पहुचा सदड़ नित पवन, सदन हारा सिमरिये नानक से देह आवन, रागा समहला पहला छे कर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको वेसा अनेक, बाबा जय कर करते कीर्त हुए, सुखा राख वडाई तोए रहाओ, विश्व चसिया कड़िया पहरा, थिति वारी माहो हुआ, सूरज एको रुत अनेको, नानक करते के कीते वेस, रागत नासरी महला पहला, गगन में ताल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलयान लो पवन जबरू करे, सगल बुन

सुख एहि वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तना श्री महला पंजवां जाको हर रंग लागो इस जुग में है सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वसता कै जाका सतगुर पूरा। अज दाए पावन श्री मुख वाक पंचम गुरुदेव साहिब गुरु अर्जन देव महाराज जी का उच्चारण किया होया तनासरी राग अंदर सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 679 तो आरंभ होके 680 उपर संपूर्ण हुंदा है। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच

कोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए भाख्या पाओ अपार आखे मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मोहो के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक ए वै जानिए सब आपे सचियार थाप्या ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविए गुणी निधान गाविए सुनिए मन रखिए भाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया सुमाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हो जाना आखा नाही कहना कथन ना जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जी आका एक दाता सो मैं विसर ना जाई तीर्थ नावा जेत सपावा विण भाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा ना और खाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोए ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत तवल आकाश सुनै दीप लो पाताल सुनै पोहि न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईश्वर ब्रह्मा इंद सुनै मुख साला हनुमंद सुनै जोग जोगत तन भेद सुनै शास्त सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै सत संतोख ज्ञान सुनै अठ सठ का इसनान सुनै पढ़ पढ़ पावह मान सुनै लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनै दुख पाप का नाश।

आवहो जाहो। तीर्थ तप दया दत दान, जे को पावै तिलका मान, सुनिया मन्या मन कीता पाओ, अंतरगत तीर्थ मल नाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए, विण गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ, सत सुहाण सदा मन चाओ। कवन सो वेला वक्त कवन, कवन थित कवन वार, कवन से रुति माह कवन, जित होआ आकार। वेल न पाईआ पंडती, जे होवै लेख पुराण, वक्त न पायो कादिया, जे लिखन लेख कुरान। थित वार न जोगी जाने, रुत माह न कोई, जा करता सिर ठीको साजे, आपे जाने सोई। किव करे आखा किव सालाही, क्यों वरनी किव जाना, नानक आखण सब को आखै, एक दू एक सियाना। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जा का होवै, नानक जे को आपो जाने, अगै गया ना सोहै। पाताला पाताल लख, आगासा आगास, ओड़क ओड़क पाल थके, वेद कहन एक बात। सहस अठारह कहन कतेबा,

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दूजी बहु लख होहे लख होवे लख वीस। लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। एत राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इकीस। सुन गल्ला आकाश की ईटा आई रीस। नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ है ठीस।

ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜੇਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋਉ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇਹੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਿਹਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹਿ ਸਾਹਾਣ ਗਣਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਮਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ ਤਵ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸ਼ਿਰਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤਰਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਨਮਸਤ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਭਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬਗੋਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬਭੋਨੇ ਨਮੋ ਸਰਬਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਵਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਿਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬਧੰਦੇ ਨਮੋਸਤ ਅਬੰਧੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਵਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਵਰਗ ਹੈ ਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਵਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਝੂਜ ਹੈ ਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਤੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਝ ਹੈ ਅਸੂਝ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਜੰਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬਗੌਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬਭੌਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ
नमो निरत निरते नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ती विपूते कलंकं विना नेकलंकी स्वरूपे नमो राज राजे स्वरं परम रूपे नमो जोग जोगे स्वरं परम सिद्धे नमो राज राजे स्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणे नमो अस्त्र माणे नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखीय परमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगे स्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सा साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अधो उर्ध अर्धं अगं ओग हर्ता परं परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयात छंद अगाधे अबाधे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ती निदाने नमस्त्वं निरनाथे नमस्त्वं परमाथे नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं अकाले नमस्त्वं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोखे नमो शोक शोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व पोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्ण नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट चंद त्वा प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वा प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग ना रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख ना राग जत्र तत्र दिशा विसा होय फैल्यो अनुराग नाम काम विहीन पेखत तामहू नह जाहे सर्वमान सर्वत्रमान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जान ही जिह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जान ही केह देव तात मात ना जात जाकर जन्म मरण विहीन चक्र बक्र फिरे चत्र चक मन ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जाप ही जिह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रचियो स्वयंभव गड़न पंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख अदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग ना रंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत
एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आदि रूप सूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपार सर्वगंता सर्वहंता सर्व ते अनपेख सर्व शास्त्र न जानहि जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भागत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवही वह चित मदपार छंद त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अनास आजान बाहु साहन साहु राजान राजपानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनपूत अंग आबा अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अतदुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्या कर्म अदृश्या धर्म सर्वा प्रनाढ़ अंडंड भाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दाने चतर चकर जाने चतर चकर वर्ती चतर चकर परती चतर चकर पाले चतर चकर काले चतर चकर पासे चतर चकर वासे चतर चकर माने चतर चकर दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र पृथ्वी स अदिश अदृश अकृश भगवती छंद त्व प्रसाद कथते क्या शिज देस है क्या पिज भेस है क्या गंज कर्म है क्या पंज भरम है क्या पिज लोक है क्या दित सोक है क्या विधूत वर्ण है के विभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के अशोक वर्ण है के सर्वा परण है के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुभव अनूप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग विहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह के पाक बे ऐब है के गैबुल गैब है के अफबुल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहंद है के राज करहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मान्य है के सर्वत्र दान्य है के सर्वत्र गौन है के सर्वत्र पौन है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज के सर्वत्र राज के सर्वत्र सोख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैवंग प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्या है के सर्वत्र थाप्या है के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वंग कलीम है के परमंग फहीम है के आकल अलाम है के साहिब कलाम है के हुसनुल वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल सिकस्त है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रजूअल निदान है हरीफुल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग हैं भेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुक्त स्वरूप हैं त्रमुक्त विभूत हैं प्रपुक्त प्रभा हैं सुयुक्त सुधा हैं सदैवंग स्वरूप हैं अपेदी अनूप हैं समस्तोपराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओंगाद रूप है अनाद स्वरूप है अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गंग त्रिवादे अगंजे अगाधे सुपंग सर्व भागे सु सर्वा अनुरागे त्रिपुक्त स्वरूप है अछिज है अशूत है के नरकंग प्रणास है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवंग सदा है विपुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है
निरुक्त सदा हैं, विपुक्त प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनुरूप हैं, चाचरी छंद अपंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, लेख हैं, अपर्म हैं, कर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अपूत हैं, अतूत हैं, अनास हैं, उदास हैं, तंद हैं, अबंध हैं, अपगत हैं, विरक्त हैं, अनास हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलेख हैं, अदेख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सुनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट छंद, त्वप्रसाद, सर्वंहंता, सर्वंगंता, सर्वंख्याता, सर्वंज्ञाता, सर्वंहर्ता, सर्वंकर्ता, सर्वंप्राणं, सर्वंत्राणं, सर्वंकर्मं, सर्वंतर्मं, सर्वंजुगता, सर्वंमुक्ता, रसावल छंद, त्वप्रसाद, नमो नरक नासे, सदैवं प्रकाशे, अनंगं स्वरूपे, अपंगं विभूते, परमाथं परमाथे, सदा सर्वसाथे, अगाध स्वरूपे, अनिर्बाध विभूते, अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकामे, निरपंगी स्वरूपे, सर्वंगी अनूपे, न पुत्रै न पुत्रै, न सत्रै न मित्रै, न तातै न मातै, न जातै न पातै, निरसाकं सरीक हैं, अमितो अमीक हैं, सदैवं प्रभा हैं, अजय हैं, अजा हैं, भगवती छंद, त्वप्रसाद, के जाहर जहूर हैं, के हाजर हजूर हैं, हमेशुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम हैं, के साहिब दिमाग हैं, के हुसनल चिराग हैं, के कामल करीम हैं, के राजक रहीम हैं, के रोजी देहंद हैं, के राजक रहिंद हैं, करीमुल कमाल हैं, के हुसनल जमाल हैं, गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल सिकन हैं, हरासुल फिकन हैं, कलंकं प्रणास हैं, समस्तुल निवास हैं, अगंजुल गनीम हैं, रजाए के रहीम हैं, समस्तुल जुबा हैं, के साहिब किरा हैं, के नरकं प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं, के सर्वुल गवन हैं, हमेशुल रवन हैं, तमामुल तमीज हैं, समस्तुल अजीज हैं, परम परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, अदेशुल अलेख हैं, अमेशुल उपेख हैं, जमीनुल जमा हैं, अमीकुल इमा हैं, करीमुल कमाल हैं, के जुरत जमाल हैं, के अचलंग प्रकाश हैं, के मितो सुबास हैं, के अजब स्वरूप हैं, के अमितो विभूत हैं, के मितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनंग हैं, के अमितो अपंग हैं, मदपार छंद, त्वप्रसाद, मन मन प्रणाम, गुणगन मुदाम, अरबर अगंज, हरनर प्रपंज, अनगन प्रणाम, मन मन सलाम, हरनर अखंड, बरनर अमंड, अनुभव अनास, मन मन प्रकाश, गुणगन प्रणाम, जल थल मुदाम, अनछिज अंग, आसन अपंग, उपमा अपार, गतमित उदार, जल थल अमंड, दिस विस अपंड, जल थल महंत, दिस विस बेअंत, अनुभव अनास, त्रित तरतुरास, आजान बाहु, एक सदाहु, ओंकार आदि कथनी अनाद, खल खंड ख्याल, गुरबर अकाल, कर कर प्रणाम, चित चरण नाम, अनछिज गात, आज जनाबात, अनचंज गात, अनरंज बात, अनटुट भंडार, अनठट अपार, आडीठ धर्म, आत टीठ कर्म, अनब्रण अनंत, दाता महंत, हर बोल मना छंद, त्वप्रसाद, करुणालया है, अरकालया है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रित के तरन है, जग के करण है, मन मान्या है, जग जान्या है, सर्वं पर है, सर्वंकर है, सर्व पास्या है, सर्वनास्या है, करुणाकर हैं, विश्वंबर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मांडस हैं, खलखंडस हैं, परते पर हैं, करुणा कर हैं, अजपा जप हैं, अथपा थप हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं, अमृता अमृत हैं, करुणा कृत हैं, अकृता कृत हैं, तरणी त्रित हैं, अमतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृता कृत हैं, अमृता अमृत हैं, अजबा कृत हैं, अमृता अमृत हैं, नरनायक हैं, खलकायक हैं, विश्वंबर हैं, करुणालय हैं, नृपनायक हैं, सर्वपायक हैं, भाव भंजन हैं, अरगंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं,
अकलंकृत हैं, कर्ता कर हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ता कर हैं, हर्ता हर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, पुजंग प्रयात छंद, नमो सूरज सूरजे, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज संग ताम संग शांत रूपे, नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे, नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विपूते, कलंकार रूपे अलंकार अलंके, नमो आस आसे, नमो बांक बांके, अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे, त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे, एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अपूवजु अनास अकाश, अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख, अनाम अकाम अगाह अटाह, अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे, अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे, पुजंग प्रयात छंद, नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे, अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे, निरकामं विपूते समस्तुल स्वरूपे, कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विपूते, सदा सचदानंद सत्रंग प्रणासी, करीमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी, अजायब विपूते गजायब गनीमे, हरियं करियं क्रीमुल रहीमे, चतर चक्रवर्ती चतर चक्र पुगते, स्वयंभव सुपंग सर्वदा सर्वजुगते, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग विपूते, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगंग विपूते, को अंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वप्रसाद सोइये, श्रावक शुद्ध समूह सिद्धान के, देख फिरियो कर जोग जति के, सूद सुधादिक संत समूह अनेक मती के, सारे ही देश को देख रहे हो मत, को न देखियत प्राण पति के, श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते, एक रति बिन एक रति के, माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे, भारी पुजान के भूप भली बिद, न्यावत शीस न जात बिचारे, एते भये तो कहा भये भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे, जीत फिरै सब देश दिसान को, बाजत ढोल मृदंग नगारे, गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर, हिंसत ही है राज हजारे, भूत भविख भवान के भूपत, कौन गने नहीं जात बिचारे, श्रीपत श्री भगवान भजे बिन, अंत को अंत के धाम सिधारे, तीर्थ नान दया दमदान, सो संजम नेम अनेक बसेख, वेद पुराण कतेब कुरान, जमीन जमान सुबान के पेख, पौन आहार जति जत तार, सबै सुबिचार हजार को देख, श्री भगवान भजे बिन भूपत, एक रति बिन एक न लेख, शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह, सुसाज सुनाह दुरजान दलेंगे, भारी गुमान भरे मन में, कर पर्वत पंख हल्ले न हल्लेंगे, तोर अरीन मरोर मवासन, माते मतंगन मान मलेंगे, श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन, त्याग जहान निदान चलेंगे, वीर अपार बड़े बरियार, अबचार हसार की धार पछैया, तोरत देश मलिंद मवासन, माते गजान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोड़न हार, सो बातन ही चक चार लवैया, साहिब श्री सब को सिर नायक, जाचक अनेक सो एक दिवैया, दानव देव फनिंद निसाचर, भूत भविख भवान जपेंगे, जीव जिते जल मैं थल मैं, पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे, पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन, पापन के बहु पुंज खपेंगे, साध समूह प्रसन्न फिरें जग,
सत्तर सभा अवलोक चपाएंगे। मानव इंद्र गजिंद्र नराधप जौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्ण सच्ची पत अंत फसे जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फेर न देह तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बाक ध्यान लगायो। नात फिरयो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक गवायो। बास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पाहन पूज तरयो सिर काहू ले लेंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पुछा को सीस निवायो। कौ बुतान को पूजत है पस कौ मृतान को पूजन तायो। कूर किरिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। कौ बुतान को पूजत है पस कौ मृतान को पूजन तायो। कूर किरिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। एको अंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिए सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तो जजू करियो हो रच्छा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो। आदि अंत एक कै अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोह बध कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। कीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा करतारा प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है आप आपनी बूझो चार है। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अरे आलम।

जानत महामूड कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पैव। आप आपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सुरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी उतपुज खान बहुर रच दीनी। कहू फूल राजा हुआ बैठा कहू सिमट भयो शंकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठ वत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट नह ऐ है। रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध करमो सब होई दुष्ट छाह छुए सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जैन नर नाम तिहारो कहा दार्द दुष्ट दुख ते रहा।

मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तोहे बखान्यो। दोहरा

है जिन जग तो पाया, कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जने अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तो दो पाए, एक वेख परसन आया, लब लोभ अहंकार चूका, सतगुरु भला पाया। कह नानक जिसनो आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज त्रिशना, बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी, एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजया, हर वासना समाणी, कह नानक चाल भगता, जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए है तिव चल है स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए है तिवै चल है, जिन्ना मार्ग पाव हे, कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्याव हे। जिसनो कथा सुनाए हे अपनी, से गुरुद्वारा सुख पाव हे। कह नानक सच्चे साहिब, ज्यो भावै तिवै चलाव हे। एहो सोहिला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहिला, सतगुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया, जिन तुरहों लिखिया आया। एक फिर हे कनेरे करहे गल्ला, गली किने ना पाया, कह नानक शब्द सोहिला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो, पवित संगत सबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित से पवित, जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित, जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज न उपजै, करमी सहज न उपजै, विण सहजै सहसा न जाए, नह जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कमाए। सहसा जियो मलीन है, कित संजम धोता जाए, मन तो वह शब्द लाग हो, हर स्यों रहो चित लाए। कह नानक गुर प्रसादी, सहज उपजै एह सहसा इव जाए। जियो मैले बहरो निर्मल, बहरो निर्मल जियो ता मैले, तिनी जन्म जुए हारिया। एह तिसना वड्डा रोग लगा, मरण मनहो विसारिया। वेदा मह नाम उत्तम सो सुने नाही, फिर हे जोंबे तालिया। कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बहरो निर्मल, बहरो ता निर्मल जियो निर्मल, सतगुर ते करनी कमानी। कूड़ की सोए पहुंचे नाही, मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया, भले सेवन जारे। कह नानक जिन मन निर्मल, सदा रह गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सन्मुख होवै, होवै ता सन्मुख सिख कोई, जियो रह गुरनाले। गुर के चरण हिरदय त्याए, अंतर आत्मै समाले। आप छड सदा रह परणै, गुरबिन अवर ना जाने कोए। कह नानक सुन हो संत हो, सो सिख सन्मुख होए। जे को गुर ते बेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होर थै कोई, पुछो बिवेकियां जाए। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी त गावो गुरु केरी, बाणी आ सिरबाणी। जिनको नदर कर्म होवै,
ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸੁਮਾਣੀ। ਪੀਵਹੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਜਪਿਹੋ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵਹੁ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰਹਿ ਰਸਨਾ, ਕਹਿਆ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਚਿਤ ਜਿਨ ਕਾਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਏ ਰਵਾਣੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਝੋ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਜਿਤ ਮਨ ਲਾਗਾ, ਇਹੋ ਹੋਆ ਸਮਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਲਾਇਆ ਭਾਓ। ਆਪੇ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਆਪੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇ ਬੁਝਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਜਿਤ ਜੜਾਓ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਏ ਕਹਿ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ। ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੈ ਬੁਝਾਏ। ਤੋੜੇ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ, ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਸਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਵੇ, ਏਕਸ ਸਿਉਂ ਲਿਵਲਾਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਪ ਕਰਤਾ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਬੁਝਾਏ।

गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते सेजन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनो अनदिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनो क्यों विसारी है ए वडदाता जे अगन मैं आहार पहुंचावे ओस नो क्यों पोहे न सकी जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कह नानक ए वडदाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर में है तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जे ही करते खेल रचाया जात सपाणा ता जम्मिया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै विटहो रहे लोक विललाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौपीऐ विचो आप जाए जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर रास मेरी मन वणजारा हर रास मेरी मन वणजारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपहो जियो लाहा खट्टे हो दिहाड़ी इहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कह नानक हर रास मेरी मन होआ वणजारा ए रसना तू अनरस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै ना पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए इहो हर रस करमी पाई है सतगुर मिलै जिस आए कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए श्रीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया गुरप्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मैं आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक हो शरीर प्रवान होआ जिन सतगुर स्यो चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन अवर ना देखो कोई हर बिन अवर ना देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो वैस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कह नानक हे नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई ए श्रवण हो मेरे हो
ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣਹੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸਮਾਣੀ, ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚੈ ਸੁਨਣੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ, ਤਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ, ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ, ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ, ਸਾਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੋ, ਗਾਵਹੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੈ, ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵਹੇ, ਸੱਚੋ ਧਿਆਵਹਿ ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵਹਿ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵਹੇ, ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ, ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵਹੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣ।

जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा।

अजुने सैपं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच हैपी सच नानक हो से सच चक्र चहन अर बरन जात अर पात नहन जहे रूप रंग अर रेख एख को कह न सकत केहे अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहजै कोट इंद्र इंद्राण साहे सहाण गणजै त्रिभवन महेप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत मोती तमंदर उस रह रतनी ता होहे जड़ाओ कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीप आवै चाओ मत देख भूला विसरै

मैं आप जी दे चरणा च बिरवंत बेनती करदा हां, हे बनवारी, हे अकाल पुरख, कृपा करके मेरी पैज रख लो, मेरी पत रख लो, मैं तुहाडी शरण विच हां। पत रखी गुर पार ब्रह्म। महाराज तुसी अपने सेवकां दी पत रखदे हो, अपने सेवक की आपे रखै, आपे नाम जपावै। महाराज तुसी अपने सेवकां दी पत रखदे हो, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। महाराज कृपा करो, मैं सेवक तुहाडी शरण विच हां, आप जी कृपा करके साडी पैज रख लो कि जमदूत जेडे है वह सानू बेआबरू ना करन, बेपत ना करन। असी तुहाडी शरण चा महाराज साडी लाज रख लो, रख हो लाज मुरार। यह बेनती करदिआं सतगुरु जी ने दूसरा बंद समाप्त किया। गुरु पातशाह जी की पावन अमृतमयी गुरबाणी है, विचारा करदिआं होईआं फुल्लां चुक्कां दी खिमा अरदास करनी कि सतगुरु जी अगे वास्ते सदबुद्धि और समत प्रदान करन। साडा सारिआं दा गाव्या सुणिआ सतगुरु जी थाएं पावन। आओ अखीरलीआं पंगतियां पढ़ के समाप्ति करिए जी।

आनंद एको अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना।

0: वाहिगुरु वाहिगुरु।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई हरपाल सिंह जी गरेवाल साहब जी का, जिन्होंने विशेष विचार आपके नाल सांझियां कीतियां जी। ते दोबारा फिर बेनती है सतसंगत जी के खालसे ते साजना दिवस नूं समर्पित ढाडी दरबार जो कि अज शाम नूं 6:50 तो लैके 9:30 तक होगा जी, जिस विच पंथ प्रसिद्ध ढाडी ज्ञानी भाई साहब भाई त्रिलोचन सिंह जी भमद्दी, भाई साहब भाई गुरिंदर सिंह जी बैंस, भाई साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी बदनी कला वाले, बीबी वीरपाल कौर जी का जत्था अभिजन गुर इतिहास ते 12 सरवण करवाउणगे जी। अज जिहड़ा ढाडी दरबार है साढ़े पार्किंग लॉट विच होवेगा जी, उत्थे टेंट लग चुका जी। आप जी जरूर हाजरियां भरनियां जी। धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दे श्री खंडपाल साहब जी जो कि कल रोज तो आरंभ होए सन, तिना दे भोग कल सवेरे 8:00 पैणगे ते 9:30 नगर कीर्तन की आरंभता होगी जी। ते अपनी प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ी चर्च वाल दा पासा उन्हां दी पार्किंग है ते स्कूल वाल दे पासे जिहड़ी उन्हां दी पार्किंग है वह लई गई है जी। आप जी सारे उत्थे अपनियां गड्डियां जिहड़ियां उत्थे पार्किंग कर सकदे हो। आओ सारे जाने गुर इतिहास दे बारे नाल जुड़िए जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
0: वाहिगुरू
2: वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू।

हुक्म थोड़ा मामा पूछे कलवंत की हुक्म थोड़ा वेले काजी नू सावरकर सिखा।

सुन वड्डा आखै सब कोए के वड्डा वड्डा डीठा होए कीमत पाए ना कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहेबा गहर गंभीरा गुनी गहीरा कोई ना जाने तेरा केता केवड चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई कहन ना जाई तेरी तिल वड़े आई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड़ियाईया तुद वेन सिद्धि किन ना पाईया कर्म मिला नाही ठाक रहाईया आखन वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाओ आखन औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख उत भूखै खाए चलिया है दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचै नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखन पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए ना ओह मरै ना होवै सोग देंदा रहै ना चूकै भोग गुण एहो होर नाही कोए ना को होआ ना को होए जे वड आप ते वड तेरी दात जिन दिन कर कै कीती रात खसम विसार है ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जान सत गुर सत पुरखा बिनाओ कराओ गुर पास हम कीरे किरम सत गुर सरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोकाओ राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हार जान के वड भाग वडेरे जिन हार हार सरदा हार प्यास हार हार नाम मिलै त्रिपता सह मिल संगत गुण परगास जिन हार हार हार रास नाम ना पाया ते भागहीन जाम पास जो सत गुर सरन संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सत गुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा क
ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਨ ਚਿਤ ਵਹਿ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜਿਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮਹਿ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜਕ ਆਗੈ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧਵ ਜੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਣਿਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰ ਸਿਰ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੈ ਸੈ ਕੋਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੈ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਨ ਖਲਾਵੈ ਕਵਨ ਚੁਗਾਵੈ ਮਨ ਮਹਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਨਿਧਾਨ ਦਾਸ ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਨ

अंत ना पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज वेडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हौ तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाना जो सेवा है जो सेवा है तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुख वासी से भुकत से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन टूटी जाम की फासी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी तिन का पाओ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी हरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक कर है हर पूजा जी तप तप है जप है बेअंता तेरे अनेक पढ़ है बहु सिमृत सासत जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड अवरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निहचल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहै सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो ताओ भावै सोई थीसी जो तू देहे सोई हाओ पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनो कृपा कर है तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे तुझ बिना दूजा कोई नाहे
ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੋੜਿਆ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲ, ਜਿਸਨੋ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸੋਈ ਜਨ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਸਦ ਹੀ ਆਖ ਵਖਾਣੈ, ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਸੋਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਤਿਤ ਸਰਵਰੜੈ ਭਈਲੇ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨਹੈ ਕੀਆ, ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਡੂਬੀ ਅਲੇ, ਮਨ ਏਕ ਨਾ ਚੇਤਸ ਮੂੜ ਮਨਾ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ ਰਹਾਉ।

न तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा भई परापत मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरा किता ना काम। मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग भव जल तरण कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ।

शरण परे की राखहो शर्मा, कबियो बाच बेनती चाओ पई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो, सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कार दै करिया, सब बैरन कौ आज संघरिया, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा, तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊ, जो बार चाहऊ सो तुम ते पाऊ, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्तर हमारे मारिया है, आप हाथ दै मुझै उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझु करिया हो रक्षा, राख लिहो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दास कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजु अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रकाशा, सकल काल का किया तमासा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियहो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पालमो बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै, जब उदकरख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम, निरंकार निरिबकार निरलंभ, आदि अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पिव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती, तुमरा लखा ना जाए पसारा,
केह बिद सजा प्रथम संसारा, एकै रूप अनूप सरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत भुज खान बहुर राच दीनी, कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट पयो संकर एकैठा, सिगरे सरिष्ट दिखाए अचम भव, आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता, जे अस तुज तव सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार त्यै है, ताके काल निकट नह ऐ है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे निहारे हो, ताके ताप तनक मह हारे हो, रिद सिद्ध कारमो सब होई, दुष्ट छाह छुवे सकै ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा, खड़

दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सुवैया। पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहुपीद कहे हम एक ना जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तोहे बखाने ओ दोहरा।

न लागे वाजे अनहद। मुंदावनी महला पंजवा। थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और धारो। तम संसार चरण लग तरिया सब नानक।